संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हर वित चित दुखाही।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया

नाय साध संत मनाय प्रिय पाय गुण गाय पंच नाद तूर बजाय रहाओ कृपा पाए सहजाय दरसाय अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम भीत जीत मटावो निद नाम नानक मोर आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

आमन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग।

बिनस ना जाए मर हां गुर ते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवां एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख

अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइए हां परम पद पाइए हां वा रस जो विदे हां तां को सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड भागया मेरे मना रहाओ संत पग धोइए हां।

चतराई, उजड़ पर मैं राहे ना पाई, बिन गुजे को थाए ना पाई, नाम बिहूने माथे शाई, साच तनी जग आए बनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाउ, जग मोहे बादा बहुती आसा, गुरमति एक पय उदासा, अंतर नाम कमल परगासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम वसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बाहर हो मैं कह कहाए, अंदर हो मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए,

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच सुमाए, जिन तरसा जी गगन आकाश, जिन सब थापी

है दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार।

आपे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हउमै कौरा रहाउ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेलै काल कंटक मारे सच पेलै इहो मन करमा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली हर पत राखै।

ग्रास इकत थाएं किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे राखह कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपह जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखह, बिन गुर शब्द जन्म के लेखह। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

कामन जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा होया शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी

सच ना पाया, क्या भविए क्या ढूंढिए, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया, रहाऊ सच मिले सच्यार।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवै जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यों त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखे वड्याई गुरमुख होए निहाली है इयों कीमत पाई जीवन दया लाहा मिले गुरकार कमावे पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे मनमुख तोटा नित है परम है परमाए मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाए तां जग आया जानिए साचे लिव लाए गुर भेटे पारस पहे ज्योति ज्योत मलाए ऐनस रह निरालमो कार तुरकी करनी नानक नाम संतोखिया राते हर चरनी आसा महला पहला केता आखण आखी है ताके अंत ना जाना मैं धरिया धर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सूजी पई गुर शब्दी मेला रहाउ हों मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब स्यों मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई ताको बिघन ना लाग गई।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारी सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मै बूझै निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागै जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया बिन नामै भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझै नाम मिलै तिसै रजाई रहाउ कल कीर्त शब्द पछाण

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार।

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझे विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे, दुख कदे ना होई, गुरमुख हउमै मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले, जा नदर करे, किलविक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया, दे नामे लाई, नानक नाम निधान मन वसिया, वडियाई पाई, आसा महला तीजा, सुन मन मन वसाए तू, आपे आए मिले मेरे भाई, अन दिन सच्ची भगत कर, सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू, सुख पाव है मेरे भाई, हों मैं दूजा दूर कर, वड्डी वडियाई रहाउ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विण सतगुर पाई ना जाए, पंडित पढ़ दे जोत की, तिन बूझ ना पाई, आपै थै सब रखियोन, किस कहन ना जाई, आपे दे सो पाई है, गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे, सब ना का सोई, मंदा किसनो आखी है, जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा, एका सिर कारा, आप पवाली दितियन, अंतर लोभ वकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन, बूझन विचारा, भगत पियो नानो बख्शियन, अंतर भंडारा, ज्ञानिया नो सब सच है, सच सोजी होई, कोई भलाए किसे दे ना भुलनी, सच जानन सोई, कर्म है पंच वर्त दे, पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वास

बाहर किछ नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक ने

नानिवह दूजा भाउ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वास आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाव सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया।

दे आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाऊ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

अंतर बाहर एक है, बहु विद सृष्ट उपाई, हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, इकना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक धुर पवित पावन है, तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस अपनी तिसनु भावनी लाए, सत संतोख ए संजमी, मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है, कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है, सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू, गुर शब्द वीचा।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाउ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिन्ना पिर का स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जमे सच नाम वापार जो इत ला है लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावै फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना बिटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुना बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखी है जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फिरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हउ मैं मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा वपारी एकै थाट, जेजिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मुरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाई, सब जग चल तो पेखी निश्चलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निश्चल पावह ठाऊं, मीत साजन सुख।

साथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माई, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई। जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई, हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाई। अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार परा।

आई सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई जो तू कराव है सो करी प्यारी अवर किछ करन ना जाई दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रह समाई संसार कूपते उधर लह प्यारी नान

सत्य सोहे श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया।

ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्थे थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर की जी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया कर्मी कर्मी हुक्म पया नन्ने नाहा भोग नित भोगे ना दीठा ना सम्मलिया गली हों सुहागण पैने कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखे बूझे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहिया फप्पे फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बे पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चित है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरू पड़या मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आखे गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने रारे राव रहिया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदे सब लाई कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ले लाई तंदे जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाने ता कै हुक्म पया ववै वास देव परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखे चाखे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहिया राड़े राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटो कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्याव हो हर नाम समाव हो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़े आप करे जिन छोड़ी जो किस करना सो कर रहया करे कराए सब किस जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल भया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया रहाऊ सिदंगाय सिमरह नाही नन्ने

जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरां का भार तुद लया जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया सस्सै संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादै तेरा जन्म गया मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया ककै काम क्रोध भरम्यो हों मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विण बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जलियो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ट हुआ कग्गै घर घर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवही मूड़े परपंच तू पलच रहया सच्चै आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै भवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मैं पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै धावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुरु मुक्त ना हुई हरारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को सत

वाद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारू आवण जावण थाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जितै हो जाई साचा सिरजन हार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जियो दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवे हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हों जाई साचा सिरजन हार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवे गुर शब्द कमावे कबहु ना आवे हार जियो ते कबहु ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईऐ मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हों तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो इन फल टूट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करहे से सुकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ।

साहिब मन वसै की पासह गम जाली राम। मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया। भगत कर जित लाए हर सिऊ, छोड़ मनो अंदेसिया। सच कह नानक चेतरे मन जी अड़िया परदेसिया। नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाने सत गुरु जिन चेतिया। बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगद अचेतिया। हर नाम भगत नारद साचा से।

साधु आसा महला तीजा संत घर पहला हम करे साचा सुहला साचे शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सिंगारी सच सुवारी सदा रावी रंग राती।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

गुर का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है। एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे। साचे नाल तेरा गंढ लागे गुरमुख सदा संभाले। यूं कह नानक जह मन तू धामदा तह हर तेरे सदा नाली। सतगुर मिले तावत थमिया निज कर वसिया आई। नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई। तावत थमिया सतगुर मिले दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाई। यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

ता सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी वधाई।

मन मुख मुग्ध चेत है नाही अगे गया पछतावे। यूं कह नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान कर है जे हौ किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मल खो। हो नमाणा सतगुरु अगे मत किसे आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर कै भाणे करहे कार सतगुर कै भाणे लाग रहो। यूं कह नानक आप।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जां तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया भाउ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए कुमार।

साई सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाज है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चाक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संच है भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला तरिय जाया वै गुर सरनाई।

तब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचै त्याया

राम नाम वसै किन किंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम त्याया राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम, मन तने अर्पया बहुत मन सरदया, गुर सेवक पाए मलाए।

ब्रह्म पौ पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सखाई गुर शब्दी हर रस भोग जियो हर रस भोग महानिरजोग वडभागी हर रस पाया से धन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगै पग साधू।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, हथ किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो। महा जुद जोद बहुकीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लह जाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया।

जग उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जीओ। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जीओ। ता की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जीओ। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब मैं रहया समाए जियो, काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत ना पाया, तिस रूप नारेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर ना कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यों भावै तिवें चलाए जियो, तुदे आपे भावै तिवें चलावह, सब तेरे शब्द समाए जियो, सब शब्द समावै जां तुद भावै, तेरे शब्द वडियाई, गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ, शब्दे रहिया समाई, तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी हों मांगू सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वच्छल हर बिरद है।

तन नानक कौ हर बख्शिया हर भगत भंडारा। हम क्या गुण तेरे वितर है स्वामी, तू अपर अपार राम राजी।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर टुठा। जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु।

करे, मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चातरक बूंद जिवें मन

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मो।

सहज भया, गृहवास आया मंगल गाया, पांच दुष्ट ओए भाग गया, शीतल आघाणे अमृत बाणे, साजन संत बसीठा, कहो नानक हर सियों मन मानिया।

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम। गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, सानथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारी बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना।

जानी है। हर सास ग्रासमा बिसरै कबहू गुर शब्दी रंग मानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख डारा चातरक जाचे बूंद जियो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे। पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोए सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे

कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिनियर देखी है। कोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है। हर प्रीत करी जै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चराणी।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी। जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना, कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी। सगल तुझ आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझ दयार। मन तन रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर। सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है। जख किनर गुण भनी, कोट इंदर अनेक देवा। जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक। साध संगत मिल उधार, कोट देवी जाको सेव है। लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है। पौन पानी दिन सरात, नखियतर ससियर सूर त्याव है। वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी। सदा सदा त्याव, सिमरत प्राण चतर बेद। खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल। नानक मिली है संग सात, जेती प्रभु जनाई। रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै। तेती नह जाए गनी, अवगत अगंत अथाह ठाकुर। सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता। नह दूर संगी जाहरा, वस भगत थिया मिले जिया। ताकि उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए। सीस साधा धर चरनी, आसा महला पंजवां सलोक। उदम करहो वडभागी हो, सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है, दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइय, भेटत साधु संग जमपुर नह जाइय। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसैव सूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोज।

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जंपै भगत वचल हर बिरद आप बनाया हस

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामु शरण पावो, करना मैं प्रभ कर्मया। समर्थ अगत अपार निर्मल,

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमत आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उदारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

हल्ला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरपो पये पराण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पई राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करह पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ से जा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लय उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया, खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई, गणत नाही किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए किस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिध चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस

आयो माथे जिस पास लकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काश अवर नाही। पाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो।

मिल बैरागी खिन रहन प्रिग तन तिस बिना पलका न लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अन दिन प्रभ।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे

उगवह सूरज चढ़े हजार केते चानण होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग।

जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं, सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया, जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया, सलोक महला पहला।

मन भाउ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

तिथहु उपज कित संयम एह जाय हम एहो हुक्म है पय कृत फराय हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन यो पाया जग तिस जो हारी स्वास्थ तिस तिस देवान अपहग नानक सच्चे नाम बिन क्या

मल उतर तन करे हच्छा तूय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल च छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए।

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

होइ बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक।

जित दरगाह गया हारी है अड़िया अतै ओमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर बताई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगै रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगै रथवाहु द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवाहु कल युग।

सहसाच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लोह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आव है पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सब को निवै आप कहो

मैं जो हंता मिर्गाहे सीस नवाया क्या किया जारिदैक सुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं द्वे तूती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै विण सतगुरु।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग इन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा। सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहै कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड्डी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

पया तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामै रस खाए नानक एवै जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण वे आह पंडो होवै दोस्ती पंडो चलै राह पांड मोआ पांड पालिए पांड होवै बंदान सो क्यों मंदा आखिए है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजै पंडै बाज ना कोई नानक पंडै बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चै दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

आए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे हैं रंग रूवे हैं चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

किसनो अगली ओह वजहो पेदूणा खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇਕ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭ

गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो।

माया पास बंद नहीं पारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तो मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग वे हर के संतना आखी है, बानारस के ठग ऐसे संतना मोह को भाव है, डाला स्यों पेड़ा गटकाव है रहाव, बासन मांज चिराव है ऊपर।

तेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो।

भाव आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राजभोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेत जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोलना गदहा नाचे पैसा भगत करावे।

आवे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया फहरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकरी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

नैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपराध

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन

सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को

कारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना।

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ। कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विदबानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा। जमका डंड मूंड मह लागे खिन मह करै निवेरा। हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावै सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीके। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीके। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

चराए, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखे

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब के

अवतार चिरायुः कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव नैन देख पतंग उर्जे पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार पर हर

साज सब ठाका राम नाम बस होई। अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बुझावे रहाउ। काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी। काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

है खबर ना कर है दीन के बौरी ताते जन्म अलेख है रहाव साचक तेब बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीता।

होके दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हीरे हीरा वेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुर गम दिया दिखाई। आसा पहली कुरूप कुजात कुलखनी, सहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम रमऊआ ला।

रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तौ पर साचे हर गुण गाए कूदह अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन।

जाना सब जग अनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांति मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम।

तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम

मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं।

मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुदबदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काय करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काय करूं। ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तुम सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती। माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यावो सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जा।

अंग सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम यौगन तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपुरे जस कीरा, सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डरपै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो।

हर हर हर हर हर हर हरि, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पे आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै। दौर्यो फिरत है रहाउ, जब कछ पावै तब गर्भ करत है। माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसै लुभाना।

वसिया पार ब्रह्म भगता मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाऊ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राख ऐसा खसम हमारा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां मनहूम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहे आ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदियां छे माह तुड़ंदियां हिक खिनो जिमी

उपजे वेद पढ़ मुख कंठ सवार ताको अंत न जाई लखना आवत जात रह गुबार प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे पवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मन मुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेर अंतर ज्योत शब्द धुन जागे सतगुर झगर नबेर सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे है गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए हर सेती चित गहर है जरा का भौ न होवे जीवन पदवी पाए रहाउ गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

गुर आपने सत बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसे सहजे रह समाई रहाऊ, जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई, से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई, नानक गुर ते गुर होया

बाहर हूँ संत कहा आहे, तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए, जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए। कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई नानक विचो हम मैं मारे ता हर भेटै सोई। गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल। जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह है सदा सुख होई। रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए। दिखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस है पूज ना हो वई। बिन मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए। नानक बिन नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए। गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए। सतगुर मिले मत उपजे,

है ता भरम विचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाई हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रहे समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मन

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

अस गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भारहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम परगास। गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सत संगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ को है, मेरे भाई जना मोको गोविंद। गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ, सुख साध।

मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरिया।

था, जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ, वड भागी हर नाम ते।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोहे मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहे जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोधे

सब निद पाई हाथ चरे हो हर थूका खाव हो खर्च हो टूट न आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विखनासह पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो।

बेशकमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पुरी उठ सदास हुए अनन मन हट की दृढ़ता आपस कौ जनात जो अनिंद निंद कर छोड्यो सोई फिर खात सहज सुपाई पई।

जिस मालुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे।

पदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई, नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत न

नाम तुम्हारू सगल श्रेष्ठ को तनी की ही जय जन को अंग नरारू रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारू नाम देवो त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझ।

आराधु प्यारू निमखना की जय ढीला संत सेवा कर भावनी लाइय त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहे ओ ही अरे कह संगे देख मोहयो मन लीला रहाउ जिस सिमरत मन होत अनंत।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रब सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे तू टह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा।

तह भरम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्ब प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निस हर भोर।

ते ताहि साध संगत को जोहि न साकै मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत पर जारे मोह को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

आप जस मिटै हुए जग कीरत दरगाह बैसन पाईए जम की त्रास नास होए खिन मह सुख आनंद सेती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्या

हार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाव रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोई कोट जतन अपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरन साधु निर्मला गा

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया,

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कू करी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

और ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी, वड्डे भाग लिव लागी। कवल प्रगास भय साध संगे, दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ पहर हर के गुण गावे, सिमरै दीन दयाला। आप तरै संगत सब उधरै, बिनसी सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी, ओत पोत प्रभ साथ। शरण परयो नानक प्रभ तुमरी, दे राख्यो हर हाथ। गुजरे अष्टपदियां महला पहला, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक नगरी पंच चोर बसी अले। बरजत चोरी धावे, त्रिह दस माल रखे जो नानक। मोख मुक्त सो पावे, चित हो बास देव बनवाली। राम हृदय जप माली रहाओ, उर्द मूल जिस साख तलाहा। चार भेद जित लागी,

काम क्रोध अहंकार तदियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

पार सर्व दृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर।

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे, ऐसी नाम बड़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते भेख करह भिखिया को, एते उदर भरन कै ताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी।

जिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

लावे बिन मना अदुआराई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई सत संगत की वडियाई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति जोत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं तै पाए भगत तर भवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरन गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो

अंते जम पवो भाग रहाउ। आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए।

रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर ना मांगो हर रस प्रीत प्यारी गुजरी महला पंजवा घर दूजा

बेकार रख धर्म भरम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ भंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वार।

वस्यो मन आई त्रिक अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आई माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो तन सौंपया जे जी मैं रहया समाई।

आई तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा सबना का सहो एक है। सदी रह हजूर नानक हुक्म ना मने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंतना लायो पावो। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाए कितै ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ਇਸ ਨੂੰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ।

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजै, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाइन।

पे रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

तिस जीवड़ अवर ना कोई। वाहु आहु अगम अथाहु है, वाहु आहु सच्चा सोई। वाहु आहु विपरवाह है, वाहु आहु करी सोहोई। वाहु आहु अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोई। वाहु आहु कर्मी पाई है, आप दया कर दी। नानक वाहु आहु गुरमुख पाई है, अन दिन नाम लई महला तीजा। बिन सतगुरु सेवे

आए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया नानक भये अचिंत हर धन निह चलाया श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णो महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी। नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा, जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचारदा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, जिसनो लाए सच तिसे उधारदा, जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजै अग्न जलाए, जीव दे आनित जापिए, नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

गुण गाव कूट कलीचा उपजह नानक बिसरै नाउ महला पंजवा नानक सतगुर भेटै पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पै नंदियां खवंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम निदान।

जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ध्याएंदिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपीए। जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आया चित निहाल साहिब बेशुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किस तिस कै वस न कोई बाहरा, सो भगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ध्याइन तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन सच ना लगो रंग पौड़ी ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुरमत धोवना जप जप तुद निरंकार भरम पौ खोवना जो तेरे रंग रत्ती से जोन ना जो

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसह दयाल बुझाए हुक्म मित जिसह पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर का।

हम हर की सेवा, गुजरी घर पहला, मलै न लाछे पार मलु, करम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेख्यो, कमने जाने री बाई, कौन कह किन बूझी है, रमैया आकुल री बाई, रहाओ ज्यों अकाश पंखी अलो, खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी तन बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे सूकर जोन वल वल अवतरे अंतकार जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे प्रेत जोन वल वल अवतरे अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे बदत तलोचन ते नर मुक्ता पीतम।

पुरुख मनोपिमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं वद अमृत तत्मयं नाद नोत जसमरणे जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद पराभयं जस स्वस्त सोकृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट पर ग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह के

हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाव लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाव, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाव, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाते शुक्ति, छका एक, देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाई है,

ज्यों अपने प्रभ भाव नीचों नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यों प्रीत कटावो ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाव आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

आ रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा हा। ते बड़ भागी।

तारहाउ जिन किया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावे हैं मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना

नारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बहादेव रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरने हारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधारी महल।

जाको उपजी छोड न कतहु जाता रहाउ। बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

आय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल भई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

जन चरनी निस बासर दर्श पामो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लही है।

सत्यर तौत्तरी सकल दुराख्य देवगंधारी पंचवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाउ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

चार बरन मुक्त भये सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई।

गुरमुख जान रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारी रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संयम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान, कहो नानक पाए है परम निदान। देव गंधारी पंजवा, जानी ना जाई ताकी गात रहाव, कह पखारू हो कर चतराई, विस्मन विस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्ध अर साधक, सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक, चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे, ताकत संग ना छुटकी रे रहा। जो काजर भर मंदर राख्यो, जो पैसा कालू खीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा ने।

तरह रहाव मद माया कै भयो बावरू हर जस नह उचर कर पर पंच जगत को डहक अपनो उधर भर है समान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धर है कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सर देव गंधारी महला नवा सब किस जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप हर फुन ग्रह की नार रहाव तन ते प्राण हो जब न्यारे तीरत प्रेत पकार आद करी को नह राखे घर ते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जहां ते होत उधार देव गंधारी महला नौवा जगत मैं

अगणत अपार लख निरंजन यह सब जग परमायु सगल भरम ताज नानक प्राणी चरण ताहे चित लायु।

राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम। हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम।

0: राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपूरै गत मित पाया राम। गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम।
1: अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए,
0: इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर

लड़िए। हर अमृत हर तरनाथी राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए। जन नानक खिन हर राते राम, बिहागड़ा महला चौथा, हौं बलिहार।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनह हर तेरे राम सो सी

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झक मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर रव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधातै धुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़ै सो आया, रिद सिद्ध नव निदहर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वदाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिया प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागिनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागिनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी

कै चरण लगे है। मन प्रिय प्रेम घना हर की भगत मंग है। हर भगत पाईए प्रभ त्याईए जाहे मिलिए हर जना। मान मोह विकार तजिए हरप तन तन एहो मना। बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम भीत हर हर मिल भगै है। बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जप है। हर नार सुहागणी सब रंग माणी रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी। नह दुख पावे प्रभ त्यावै धन ते बडभागिया। सुख सहज सोवे है किल विख खोवे है नाम रस रंग जागिया। मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणी। बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणी। तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा। हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु। प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु। जो सरण आवै तिस कंठ लावे एहो बिरध स्वामी संदा। बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा। बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवर तह करहु निवास मना। कर मज्जन हर सरी सब किल विख नास मना। कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते। जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे। मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो। बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो। तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम। मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम। मिल संत गावह खसम भावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया। हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया। गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू। बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू। सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम। अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे। अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे। हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी। बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी। मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम। जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम। मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

0: तपतमा कतह बुज्ज बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारीय नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना। नानक चातक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमुख मन होना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरे। अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊच अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा महल।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाणे दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

प्यारा सो दिन सफल गणिया हर प्रभु बुलाया राम सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद बनोद सद ही गुण गोपाल नित गाई है भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है गह कंठ लाए सहज सुपहाय आद अंकुर आया बिनवंत नानक आप मिलिया बहुड़ कतहू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनहो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे तेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कलेश भंजना सरन तेरी रख ले हो मेरी सर्ब मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो कर के चेरे तू समरथ सदा

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन भ्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दुख कर कर जोरी नानक सरन समर

तरना संग सोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप उपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन, सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो, सेवक सियाने राम, सरपर विचड़ना, मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला, कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गवाई है, हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, कीत्या पछताने, तार अनग्रहो, अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो, साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे, सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया, संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी, हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए, सो सर्व गुण पर बीना।

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़िए। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाम वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रह निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बह खावे आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावे। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध।

आए। गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे लय मलाए पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजै। आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै। आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजै। आपे पुन सब आप कराए आप लिप्त वरतीजै। आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेका अंदर हो जोर छड तू पहो कर झल गवाए। गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम करो।

चाहे महला तीजा। एक सतगुर की सेवा करहें चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपनिया सेवका की आप पैज रखै, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यारा

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

तृप्त भई हऊ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नजर न आव ही वसह हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा

छुड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम ते आए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरियां बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने। तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहया समाय नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्द समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेस करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा कट कट वस है जान है थोड़ा

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा, बढ़ान

अंतर भूख ना उतरे अमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इह कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, तब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमै लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ पिया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड

कबहु न जावे। राजू ता तेरा सदा निहचल एहो कबहु न जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा हुआ एक तेरा नावे। जुगा जुगंतर भगत तुम्हारी

अलख अपार तेरे बंके लोएन दंतरी साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोयने की ताला स्वर्ण ताला कृष्ण माला जप हो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुन हो मेहली हो।

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गवाया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे पर पूरे राम फिर रव रहे पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

ब्राह्मण वडभागी अंतर लिब लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिंगार बनाया हों मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाई हर वर राव है सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई।

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर,

से आखी है और करना किछु ना जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों किस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजे राम, रसना हर रस पीजे अंतर पीजे, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काड पिए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रुबीजे, नानक नाम रते से निर्मल, होर हूं मैं मैल परिजे, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया।

गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पंडारा गुरमुख होवे सोई बूजे सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले होर कहना किसु ना जाए नानक बिन नावे परम भलाया।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है।

आए। जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते। हौ जीवा हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम, हौ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम तूरा।

हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हर आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई, बड़हंस महला चौथा, हौ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम त्याया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

रह तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

सतगुर पुरख ना पाया, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती राम, गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर करह भगती राम, हर हर सतगुर करह भगती, जा हर प्रभ कृपा तारे, मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे, कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चातरक दीन, हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे हैं, सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बात पूछे हैं, जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लग हैं नित करहें बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता, हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम, जप हर हर नाम, लथ अड़े जग तापा राम, हर हर नाम जिन्नी अराध्या, तिनके दुख पाप नवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे, हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा, सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम, मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा, अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा, जात अजात नाम जिन त्याया, इन परम पदार्थ पाया, जप हर हर नाम, मेरा मन पाया, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम, हर दयाल शरणाया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया, सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे, हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम। वडहंस महला चौथा, घोड़िया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी, राम उपाइया राम, धन मानस जन्म पुन पाइया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देहे सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया, एहे देहे सो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया, वडभागी पाई नाम सुखाई, जन नानक राम उपाइया, देह पावो जीन बुझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम, बिखम भोए अंगा अंत तरंगा, गुरमुख पार लंघाए, हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे, गुर खेवट शब्द तराए, अन दिन हर रंग हर गुण गावे, हर रंगी हर रंगा, जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा, कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम, तन प्रेम हर हर लाए चाबक, मन जिने गुरमुख जीतिया, अकड़ो कड़ावे शब्द पावे, अपेओ हर रस पीतिया, सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी, हर रंग तुरी चढ़ाया, महामार्ग पंथ बिखड़ा, जन नानक पार लंघाया,
घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई।

0: राम हर प्रभ मंगिया
1: कड़ियाल मुखे
0: गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावै रंग महली हर रंग माणे रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा चंत घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमिल लद्दा जी राम प्यारा राम एहो तन मन दितड़ा वारो वारा राम तन मन दिता पवजल जिता चूकी कान जमाणी अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवन जानी सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा कहो।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किस नाम बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरणे आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बया।

ने से परधाने हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणी कहो नानक जिन हर प्रभ।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जेरो ऐ लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रो है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन्ही लिया, हुआ तिसे का पाना, जो तिन कर

तारेवा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोवण हारेवा धंधा रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

दाता शब्द रंग राती जोबन माती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणिए आपे लहे मलाए इन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे

समाय जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

जन्म गवायो रोवै अवगुण यारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोइया रोवै कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी। सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए। आप कटे तन सीजै जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजै जम काल ना सूजै माया जग लूजै लभ लोभ चेत लाए।

पिर नाले गुर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले फिर अंतर संभाले सदा है नाले मन मुख जाता दूरे इहो तन रुलै रलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा धन मिले मलाई तेरे अंतर सदा संभाले फिकरो वह पिरह विछुनिया अंधी ना जाने पिरह नाले बढ़ांस महला तीजा गुरु वह पिरह विछुनिया मैं फिर सचड़ा है सदा नाले जिन्नी चलन सही जानिया सतगुर सेव है नाम संभाले सदा नाम संभाले सतगुर है नाले सतगुर सेव सुख पाया शब्दे काल मार सच उरतार फिर आवन जान ना होया सच्चा साहिब सच्ची नाई वेखै नदर निहाले

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणयारी मैं सदा रावे फिरे अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणयारे सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारो आप मलाए आप मिले आपे दे प्यारू आपे दे प्यारू सहज वपारू गुरमुख जन्म सवारे धन जग मह आया आप गवाया दर साचै सचियारू ज्ञान रतन घट चानण होआ नानक नाम प्यारू सचड़ै आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू वडांस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचै आए गुर राखे से उभरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै है आवह जावह अंत गए पछतावह बिन नावै सुख न होई एथ है कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई जमपुर घोर अंधार महा गुबार ना तिथै भैण ना भाई

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़े सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतमै जिन हऊ मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो संत हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया।

मिलन वड़े आईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चे नाही प्यार सच्चे शब्द हरख सदा दर सच्चे सतियार नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो नदर करे करतार महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हठ कम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

दुख मनाई। इस पेख थाम हो गिरह भला जिथ हो को वरसाई। शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजे भरम भुलाए। पै किरत कमावना कहना कछू ना जाए। नानक जो तिस भावे।

ना हो गई, अचिंत वत्सै मन आई, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाई, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाए, सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गुआय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे स्यों निभलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जिते हर का हर नाम बिलोई, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत ना खोई, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई, तिस गुर को सब नमस्कार करहो, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना, जिन सतगुर नाल प्यार, मिल प्रीतम तिनी ते आया, सच्चा प्रेम प्यार, मन ही ते मन मानिया, गुर कै शब्द अपार, एह सज्जन मिले ना विछड़ है, जे आप मेले करतार, इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया, शब्द ना करह विचार, विछड़िया का क्या विछड़ै, जिन्ना दूजे भाए प्यार, मनमुख

बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुरे अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रतना पारख जो होवै सो रतना करे विचार। रतना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझै बूझन हार। मूर्ख आप गणाई दे मर जम्मे है होए खुआर। नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चर हर नामो नित व्यवहार।

नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी। हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है। जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है। नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवै तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिलै वडियाई।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावे लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

सोहणे गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावै सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हउमै शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकलै सच वसै मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए नानक पूरे कर

गुण गाई। नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी। जिनकै हर नाम वसिया सद हिरदै, हर नामो तिनको रखण हारा। हर नाम पिता हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा। हर नावै नाल गल्ला, हर नावै नाल मसलक। हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी। हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया। हर हलत पलत सदा करे निस्तारा, श्लोक महला तीजा। जिन कौ सतगुर भेटिया,

तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाए। जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा, हो मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाय। हो मैं वड्डा रोग है, मर जमै आवे जाय। जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय। नानक गुर प्रसादी उभरे, हो मैं शब्द जलाए पौड़ी। हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर, अवनासी पुरख बधाता। हर नाम हम सरेव है, हर नाम हम पूज्य है। हर नामे ही मन राता, हर नामे जेवड कोई अवरना सूजै। हर नामो अंत छडाता, हर नाम दिया गुर पर उपकारी। तन तन गुरु का पिता माता,

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज

हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला। घर ही मुंद विदेश पेर, नित चूरे सम्माले, मिलदियां ढिल ना हो गई।

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राख्या अमृत सच्चा नाव भोजन चाख्या तिपत रहे आघाए मिटी पपाख्या सब अंदर एक वरत है तिन विरले लाख्या जन नानक भय निहाल प्रभ की पाख्या श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजे भाए।

0: मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

सोथिया रन के रुन्नै होए धरती उपर कोट गाड़ केती गई बजाए जो आसमान नाम।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवे मरे बिख खाई गंदन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही, अमृत हृदय वसाई, निर्भउ निरंकार निर्वैर, पूर्ण ज्योत समाई। नानक गुरविण भरम ना भागै, सच नाम वडियाई। सोठ महला पहला दुतुके, पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंट चौबारा, सगल भवन की मूल।

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै सूठ महला पहला, हों पापी पतत परम पाखंडी।

ता हर रस गाई मन तृप्तै हर लिव लागा ताज संगत मह हर रस पाईए गुर मिलिए जम भउ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा चौठ महला पहला सर्व जिया सिर लेख तुराहू।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपियो परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

कर कर विगुते केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुरु ज्ञान सदा घट चानन अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती।

सुख दाता, इसका अंत ना पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, ओ पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रत्ता इक रंगी, शब्द सुवारण हारा। सोरठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया साध ही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै पाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर पाई।

मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभै तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझे विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नखह बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लये उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मनमुख मत ना का।

सरनाई। अपनी नदर करे पत राखै, हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुरते आप पछाता, शब्द सच्चै विचारा। हिरदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर रविया सब ठाई, हिरदय नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा। सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावै गुणी अगाया। कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोए ना बूझै, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवै सो मग पजाणै, हर रस रसन रसाई। जप तप संजम सब गुरते होवै, हिरदय नाम वसाई। नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दुतुके, सतगुर मिलै उल्टी पई पाई। जीवत मरै तां बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागै पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ। बिन गुर प्रीत न उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटहै मनमुख कर्म करह पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, ये गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिहीं गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओं बेड़ा नाओं तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

पावह हर रस साध ना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वडभागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृपतासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे करे अंदर सच पाई सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते।

दुबदा सहज समाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या

आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप जा।

आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुड़ ना आवन जान, रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराईंदा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यो प्रीत अंतर मन भेदिया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरै बिन सै त्यों नामै बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देव हर नाई हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

निरपौ भये गुरचरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है ती होम नहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वड्डी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रास्ते नानक कौ गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेख सब सुखिया।

पढ़िया ता को सर्व परगासा अज्ञान अंधेर है सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मांगे गह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे सोठ महला पंजवा तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब थी।

भाव, कोट पराध मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइए, इहां सुख आगे मुख उज्जल, जन का संग वड भागी पाइए, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सद अवनाशी, सरण संतन की लहिए, निर्गुण नीच अनाथ पराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में है।

आस पुजाई दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन भाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निधान सुख दाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी।

अज्ञान प्रगट भय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई कहो नानक जिस भय दयाला ता को मन ते बिसर ना जाई सोठ महला पंजवा सगल समग्री मोह।

आद शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारे राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाई है सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याई सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया जे फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंधिसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवां राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास

की दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी चोट महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख

हम पलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला।

मांगन कौ सगली दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

संतन सिंह हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

सुख नहीं पाई हो रेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाई है घाल ना भान अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्द भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाणी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवर

आवहो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल भै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अबनासी तां को बिघन ना को लागै, जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर, अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता कै बलिहारै, जिन पूर्ण पैज रखाई सूरत महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियारै देव नहार ना जानै, जियो पिंड साज जिन रचिया बाले अपनो कर मानै, मन मूड़े देख रहो प्रभ स्वामी जो किछ करहै सोई सोई जानै, रह न कछुऐ शानी रहाउ जिहवा स्वाद लोभ मद मातु, उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया।

मांगै तब कौन पड़ता तेरा ताकै। दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई। काढ लेहो संसार सागर बह नानक प्रभ सरनाई।

थीवे बिघ्न बनासन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थल रमैया आहो रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावहो एह भीतर ते इनको डारहो आपन निकट बलावहो अपनी बिद आप जनावहो

गुर पूरा भेतियो वड भागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावुहु पूर्ण होवे काला रहाउ सार समालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कौ बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई तोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहारै।

औखद मुख देव काटे जम की फंदा रहाउ। समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया। नानक नाम अधारा, चौठ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी। तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लहो साहिब प्रभ अपने। लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरनी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हुआ गया तेरा मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है।

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आग्या सुख गुर।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

आस अपने की कार जे आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ परे उपकारी पूर्ण कल जिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाईए कारज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुख

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत हुवै, उधरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहु पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म।

गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया। सोठ महला पंजवां, गुर पूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संत हो राम जपत सुख पाया।

मन पानी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी चौथ महला पंजवां भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

आओ कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ

अनपूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाउ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

सोठ महला नौवां माई महके बिद लखों गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मो मन रहयो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहयो निसबासुर नह छूटी अधमाई।

मिथ्यन को तावत केहे बिदरूप कौ ताहि रहाउ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन निमुख नाही ये बसावे। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावे। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अजहू।

पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

कह झूठह लागियो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो भूले सदा।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

क्या कथिए भाई, चालो सदार जाय। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम पला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिया कृपा कीनी, अमृत नाम अदारा। गगनंतर वासिया गुण परगासिया।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ भिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनो गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल में बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूटे पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए फिर है बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई गुर ते बुझे सुजान जो बीते से उबरे भाई शब्द सच्चा निशान ईंदन अदक सके लिए भाई पाव करं चक पाई खिन पल नाम हृदय बसै भाई नानक।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआउ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

तनहारा नानक तिन कै सद बलिहार जिन हर राख्या पुर तारा सोरठ महला तीजा दो तुकी नगुणिया नु आपे बख्श लए भाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मलाए गुणहीन हम अपराधी भाई पूरे सतगुर लए रलाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी साचे शब्द विचार भौजल पार उतारियन भाई सतगुर बेड़ै चाड़ मनूरै ते कंचन पए भाई गुर पारस मेल मलाए आप छोड़ नाऊ मन वसया भाई ज्योति ज्योत मलाए हों वारी हों वार ने भाई सतगुरु कहो सद बलिहार जाओ नाम निदान जिन दिता भाई गुरमत सहज समाओ गुरबिन सहज ना उपजै भाई पूछ हो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर भाई विचो आप गवाए गुरमति पौ उपजै भाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाइए भाई सच नाम आधार जो सतगुर सेव है अपना भाई तिनकै हो लागो पाए जन्म सवारी अपना भाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है भाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै भाई तिस बिघन न लागै कोय सोरठ महला तीजा हर जियो शब्दे जापदा भाई पूरे भाग मलाई सदा सुख सुहागणी भाई अन दिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो रंग राते हो भाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी भाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख ना लगे भाई हरे आप बसै मन आए फिर का हुक्म ना जानी भाई सा कुलखणी कुनार मन हट कार कमावणी भाई विणना वह कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है भाई पाए सच्चा बैराग अन दिन राते गुण रवै भाई निरपहो गुर लिव लाग सबना मार जीवाल दा भाई सो सेव हो दिन रात सो क्यों मनो वसारी है भाई जिस दी

हर प्यारे अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारे के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारे तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंचाए पुलायन प्यारी उतरे नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवे मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत सांगना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारी सो मोहि काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारी तिन्ना पूरी पाई संजम सहस सियान पा प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अनदिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर भरे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भव जल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिसका तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बाधे।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंड होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

ओ नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

पुरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीबे सच्चा सोए ससुरे पिए पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी राव।

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा, से सहन से सजना जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाई। दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है। फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा कुमाया।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत तज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

बिरसा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये गुर पूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइये श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे। नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप हरे आप बुलाए दा। हरे आपे सिठ सवार सिर तंदे लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा। इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना। हऊ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए। सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है। गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना। हों तिन बलिहारे जाऊं महला तीजा। मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अखत तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हूं मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भौ पया बडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ हूं मैं शब्द जलाए। सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फेरे से बत्ते दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुहचारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खाद मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार यो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बल

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विस्ता काग खावई जिस हार होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराद कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एह मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै तै पौ सब किस जाने।

लायु अंत दुख पहुताय। अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए। जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना धन पल्ले पाए। पढ़ थके संतोख ना आयो

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हौ मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चे शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चे नाए प्यार नानक नाम रते सहजे रजे।

अचेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चेत हर नाम सिउ अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है जो नाम हर राती। तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है जो बोल है हर हर राम नाम हर साती।

है पिछै सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका।

आएंगे। से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए। पारस परसै पारस होवै, सच रह लिवलाए, जिस पूर्ब होवै लिखिया, किस सतगुर मिलै प्रभ आए। नानक गणतै सेवक ना मिलै, जिस बख्शे सो पवै थाए। महला तीजा, महल कुमहल ना जाननी, मूर्ख अपने सुआए, शब्द

है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दी तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाई सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाई नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

है। हर दासन को मेतर हर दासन कै वस है, ज्यों जंती कै वस जंतर, हर के दास हर त्याईंदे, कर प्रीतम स्यो नेव, कृपा कर कै सुनो प्रभ, सब जग मह वरसै मेह, जो हर दासन की उस्तत है, सा हर की वडियाई, हर अपनी वडियाई भावदी, जन का जयकार कराई, सो हर जन नाम त्याईंदा, हर हर जन एक समान, जन नानक हर का दास है, हर पैज रखो भगवान, महला चौथा, नानक प्रीत लाई तिन साचै, तिस बिन रहन ना जाई, सतगुर मिले ता पूरा पाईऐ, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिन सप्रभात, तू है ही गावना, जी जंत सरबत, नाउ तेरा त्याहुना।

लिया नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बताते हो रखवाले गुर दिते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रते गुर किरपाल बेअन अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए निबड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही कालियो न आपे जनते उपाए आप प्रित पालियो न दास रखे कंठ लाए नदर निहालियो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जालियो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाई हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताय हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवे सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हों मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे बख्श करी सबना का मां प्यो आप है आपे सार करी नानक नाम त्याएन तिन निज घर वास है जुग जुग सुबा हुई पौड़ी तू करन कारण समरथ है करती मैं तुझ बिन अवर ना कोई तुदे आपे शिष्ट सिद्धिया आपे फुन गोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्ह ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर मई है।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उभा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

जह किल मिल कारद संता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत सुमानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार भी जुल तही, मेरे नाही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर, जह अनहत सूर उजियारा, तह दीप

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिचरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यों कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना विचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण वेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

करे जा को नदर करे तुद बाज प्यारे केवर हां सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

राखै जा सोई, जह देखा तह रहया समाई, तुद बिन दूजी नाई जाई, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चल।

तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रह लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर स्यों चित लागे फिर का ना खाई रहाओ सच सिमरिया हुए।

जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाच कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुय को सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा तना श्री महला तीजा कर दूजा चौपदे।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

सुख पाए। तनासरी महला तीजा सदा धन अंतर नाम संभाले जी जंत जिन्ह प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रखे सुख सहज समाई।

उपसत तृष्णा यज्ञ बुझाय अंतर छात सहज सुख पाए गुर के भाणे चले ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन

दहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेते पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई। सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए। ते जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार। आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए। कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ, हम मूरख मूरख मन माहे। हम मैं विच सबकार कमाहे, गुर प्रसादी हम मैं जाए। आपे बख्शे लय मलाए, भिख्या का तन बहुत अभमान। अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई। गुरमत सालाही सच सोई, आपे साजे करता सोए। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, जिस सच लाए सोई लागे। नानक नाम सदा सुख आगे, राग तनासरी महला तीजा। कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम भीखक पे खारी तेरे। तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को। सदा रहो रंग राता, हम बलिहार है।

कृपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

लिख कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारी गात में तो कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाव ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाती भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सोभा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारी जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाथ कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट एव पाण हर नाम मरारी मन जपिय हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है संत मारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज वडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तेना, सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याये हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारे। सब तुझ ते आवह मेरे साह, ज्यो भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवां, घर पहला चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भव खंडन दुख पंजन स्वामी। भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो। भयो परगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद भीतर वस्या, ता दुख भरम भौ भागा। भई प्राप्त वस्त

सदा सदा तुद त्याई रहाओ, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई, अंध रूप रवेओ सब मदे, जत कत पेखों जाई, तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाई, मुक्ते निमुख बलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अगाई, तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ। किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया। गुजी पाहे जले संसारा, भगत ना व्याप माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे। हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाटे। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले तना

निर्मूल कहर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महा।

ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही हो देव हर पौ अपनो चीत रहाव पर तन पर की निंदा इन स्यो प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

अवतार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभु को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्रीमान।

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रत बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा नानक जान सदा हर नेरा।

मन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाउ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई साध संगत बिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

पधारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइय पाइय सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवां कर दूजा चौपदे

वह एकत्र तह हर जस गा वह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कर।

की रास, मिल साज संगत होवत परगास, जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट क्लेश मिटह।

आई धनासरी महला पंजवां कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त ना काहू जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे अनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पव जल तारे रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारे साध संग जपन संग मन निदान तारे चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताके। जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइय।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका युग मह धर्मा।

सगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी। राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी। मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भव निध पार उतारी। रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे। जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिन सना कतहु जात।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख

अगर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाओ कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती ये है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नासरी महला नौवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। ओह पमद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रि भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले पग तारी, अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै,

मिलै मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु भेखे। कड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भये उदा।

रंग लावे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैन लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोहे कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल जातरा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा

सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अन दिन हरक साचा।

आप पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराद एकंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एके वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

निवारी। तनासरी संत महला पहला, फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जीओ। मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जीओ, लेख ना मिटई पुरब कमाया। क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राते। अवगुण बह बह रोसी, तन जोबन आक की छाया। गिरद भय दिन पुनिया, नानक नाम बिना दोहागण। छूटी झूठ विछुनिया, बूढ़ी घर गालियो। गुर कै पाए चलो, साचा नाम ते आए पावह सुख महलो। हर नाम ते आए तां सुख पाए, पे अड़े दिन चारे। निज कर जाए बह सच पाए, अन बिन नाल प्यारे। बिन भगती घर वास न होवी, सुनहो लोक सवाए। नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचै नाए। फिर तन भावे ता फिर भावे नारी जियो। रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो। गुर शब्द विचारी नाह प्यारी, निव निव भगत करे। माया मोह जलाए प्रीतम, रस मह रंग करे। प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल भई मन मारी। नानक साच वसी सुहागण, फिर सिहों प्रीत प्यारी। फिर कर सो है नार, जे फिर भावे जियो। झूठै वैण चवे

सत संगत मिलै बड़ भाग ता हर रस आवे जीओ दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जीओ माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाहीं अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे भाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जीओ कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जीओ सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जीओ प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जीओ नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जीओ अमृत हर का नाम साध संग रावी है जीओ पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

लगातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलय जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोलय जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाऊ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिध कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन धन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन में कछ नाही तेरु काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाई, मार कंडे ते को अधकाई। जिन त्रिण तार मूंड बलाई, हमरो करता राम स्नेही। काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई, बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। दुर्बासा से

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अतरंग रूड़ो मेरो रामैया, रहाव ज्यों तरनी को इंद्र बालहा, कुसम बास जैसे पवरला, ज्यों कोकिल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, ज्यों तरनी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बारक को जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल गुण चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू, हर हर नचंती लाचना, पहल पुरसाबरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंडी महसागरा, रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, हो बल बल जाऊ रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो, चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल

रत्न लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारहा सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी इशनारी कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मुफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मुफीत सरी गादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मुफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाऊ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे

करता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज स्वार्ता रहाऊ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही रह रतन नाम हर बसिया।

था जैत श्री मोहल्ला चौथा हीरा लाल अमूल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साधु मेलो जन नीके हर साधु सरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभ स्वामी हम परे भाग तुम पाखा जेहवा क्या गुण आख बखान है तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुपत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध याना हर कृपा तार

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ धन तन वड़ भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

कृपाल कृपा प्रभ तारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

ताकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कह अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह है सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करहु गुर मेलहु।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमा हाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लै लाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपहु हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मधुसूदन।

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जैसे

कीता, जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै, तां की निर्मल रीत रहाउ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर पाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखिए सुहागन सांत बजहियो सर्ब निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मन गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनकै संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम।

अरदास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी जय श्री मोहल्ला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत।

दह दिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया ना हिन गुण ना हिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो सरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री।

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्या

खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दास प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया, सगली तिखा बुजंतिया, यार वे प्रयह बे सखिया, मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े, हौ किस चिते हिया, हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा, हौ कद पाई गुण तासा, जिन्नी मैंदा लाल रजाया, हौ तिस आगे मन डेहिया, नानक कह सुन बिनो सुहागण, मूं दस दिखा पेर के हिया, यार वे पेरे आपन पाना, किसनीशी शंदा, यार वे तैरा व्या, लालन मूं दस दसंदा, लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बाहां पकड़ ठाकुर हौं किद्दी, गुण अवगुण ना पछाणे, गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किस सुहंदा, जन नानक तन सुहागण साई, जिस संग पता

महामंगल रहस थिया, फिर दयाल साधना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, त्रय अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई, जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

पूर सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक।

बूढ़े मरण चीत ना आवे। पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया। किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया। उदम करह अनेक हर नाम ना गावही। पर मह जोन असंक मर जन्म है आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कशु ना आवे। बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे। रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही। बिनवंत नानक पर मह परमाए खिन एक टिकन ना पावही। जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया। कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया। नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया। कहया ना मन है सिर खाक छान है। जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर भै संसार प्रब आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

आपदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं, मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए, पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाइय नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उद्म है हर भगत भाव।

ध्रुव पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

सलोक बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

पछतानिया बिन पूरे गुरुदेव फिरै शैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग धन कपटंग कुल गर्भ तह संचंत बिखिया सलंग छिदनंग नानक बिन हर संग ना चालते पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुली माया पौड़ी चलदिया नाल ना चले सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजी है हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजी है सलोक नाच राज सुख मिष्टंग नाच भोग रस मिष्टंग नाच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग साध संग हर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो धनी पौड़ी हर बिन कछु ना लागई भगतन को मीठा आन स्वाद सब फीकिया कर निर्णौ डीठा अज्ञान भरम दुख कटिया गुर भये बसीठा चरण कमल मन बेदिया ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यकत जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चातरक मेघ मंडल है बाण बेदंच क्रंक नादं अल बंधन कुसुम बासन है चरण कमल रचंत संत है नानक आन नारुचते मुख दिखाऊ पलक छड़ आन ना देऊ चेत जीवन संगम तिस धणी

चात्र को क्यों कर कृपता वह नाद करं कह बेदया सनमुख उठता वह पवर लोभी कुसम बास का मिले आप बंदा वह त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है।

सदा हजूरीय सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारन जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरे नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण है।

पड़ी परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर ना भवजन फेरा रहाउ। मेरे हियर लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ आया,

है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना

भयो अनुग्रहो जाको प्रभ को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करहो परगासा। लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूझे।

सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूटे, पवजल जगत तरायन, खोजत खोजत

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किछ नाहीं।

मूर्ख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंद करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमुख को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नेमा हर हर त्याई।

सब किस किस के ग्रह मह आया टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रूढ़ो।

पायोरे महाराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते

मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरे देखन को दर्शन प्रभ नीत बात घाट तोसा संग मोरे मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमकहि अरेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खूब हो भरम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरा अमृत दृष्ट धारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

दह दिस राव रहिया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर। तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

राम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पये

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़ा भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गई।

कोट अनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हम।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। कायरे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम।

हिंस तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पव जल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नगर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हिच ना दानी रहाऊ जन पिसर पदर बिरादरा कस नीस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाव केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर पीछिया पाई। तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इहु तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंतना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

सभी ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार, रहाओ है तू होनहार, अगम अगाध

रूपा सिमर सिमर सिमर जन सोई नानक कर्म प्राप्त होई जिन जपया तिस कहो बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

आखिए तुस करे पसाऊ हों गुर विट्टो हों सद वारिया जिन दितड़ा नाऊ सो धन गुरु सा बास है हर दे सनेहा हों वेख वेख गुरु विगसिया।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी कलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहार।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

कोठे मंडप माड़िया पासो चितविया टटिया कामना आवनी विचों सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांज वसन कोट कोट जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कामना आवनी ते गुण मैं तन हन अंदले

जोगनाथ ये सिद्ध संतर भवे हैं, जोगनाथ तीर्थ नहाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेट है।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गटके रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज।

भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल विक पंग, हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत संग

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुरा।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे भाई, तौ कत अनत साद लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाए, हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

किसन उतरिया घर जिस जाई, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पग आए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शीपा कह बलाय, खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम दे लिया मुख लाय, जितने भगत हर सेवका, मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाय, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर अराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे, किस हल

का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, यो हर धन अग्नि तस्कर है, पानी है जमदूत है, किसे का गवाया ना जाई। हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी, जम जा गाती डंड ना लगाई। साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया, तिना एक विख नाल ना जाई। हलतै विच साकत दहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलट साकत, हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर खाऊं नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जाप।

त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाई। सूही महला चौथा तू करता सब किसे आप ही जान है। क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै। जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है। बुरा भला तुद सब किस सूझै। तुद भावे तिवें भला वह रहाउ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख। जे ही तू नदर करह तेहा को हुआ बिन नदरी नाही को भेख। तेरी बड़ियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई। जिस

जिनकै अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग पए गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हउ मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हउ मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूझी पाई हउ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडिआई हौ आख ना साका,

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाऊ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाईऐ, साच लगे ता हूं मैं जाईऐ। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरियो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई प्रम प्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता धन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो धन मतवंता धन जागै जे पिर बोलंता पई नरासी बहुत दिन लागी देश दसंतर मैं सगले जागे हिन रहन ना पावो बिन पग पागे हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे पयो कृपाल सतसंग मलाया बूझी तपत करह पिर पाया सगल शिंगार हुन मुझ है सुहाया कहो नानक गुर परम चकाया जह देखा तह पिर है पाई।

आता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता। कहो नानक प्रभ बिनो सनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई। रहाउ दूजा सूही महला पंजवां, बुरे काम को ऊठ खलोया।

लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा काट काट अंतर तुम्हें बसारी सगल समग्री सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर अलख अपारी नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवा कमन काज माया वड़ियाई जा कहो बिन सतबार ना काई इह सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाऊ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊचते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे उपारा।

पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उच्चरियै रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जा कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवा गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट कौ दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाउ पवजल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करहो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुर की रेन वड भागी पावे नानक गुर को सद बल जावे सूही महला पंजवा गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रहाऊ।

केकिल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंधप पाई। जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम। सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह। कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गर कोट हमारे। काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी। सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा। गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंग।

तन तूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रे दमाही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाव अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साद ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छड़ाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए हर चरण गहे नानक सरनाए सूही महला पंजवा दीन छडाए दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाए जो तिस भावे सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराए दीन कै तुसै दुनी ना जाए सर्ब निरंतर को जागे जित जित लाया तित तित को लागे अगम अगोचर सत साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा सुई महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत ऊत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाव प्रभ अविनाशी रैन दिन गाऊ जीवत मरत निश्चल पावे थाऊ सो साहु सेव जित तोत ना आवे खात खर्चत सुख आनंद विहावे

राम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपुरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए।

आस हर से राते राम रसायण अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काटे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्व सुख फिर नहीं डोलाया गुरु ते आए हर चरण मन कीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

अल्लाह पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

गुण हरिया सर गुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहु विद रूप रंग अपारा पेख खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत।

करनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बे

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा। लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

प्रत्येका निमक सिमरत जित शूट है संतो हो सागर पार उतरी है जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहा कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई। आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवां।

पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाई दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

आऊ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई।

स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श ना मेट कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई।

निद पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया। भणत नानक सहो है पी होसी, जय भावै प्यारा तै रवेसी। सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया, ठग मुठी कूड़े आर जीओ।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे भिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले भिख बीजे भिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए।

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन बिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए।

पाए, तन मन सौंपी आगे धरी, विचों आप गवाए, खिंचो तान विगुची है, एक सस्यों लिवलाए, हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए, सतगुर नो मिले से पाहिरा, सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है, दर सच्चा दिसन से भाई से सजना, जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन, गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै, सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों, लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है, चलै ना चल दिया नाल, विण नावै नाल ना चल सी,

अखुट है गुरमुख निभ है नाल ए मन मूलो भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमती सच त्याय हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रपै।

ई मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार नै मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाही समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुरचरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देखन

तिहार पह गुर मेल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई। जो तुद सेवह सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई। जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोलहै सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई। नानक का जीओ पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अघाई। नानक का प्रभ पूर रहो है जात कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा।

सुतियां गुर सलाहिया उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस पर

आद मद अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी,

काल कित्ती लाख करोड़ प्रिय रोम ना पूजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो हो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किल विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख ना पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाही अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजह कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाऊ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मान्य कुचजी अम्मावन डोसड़े हौ क्यों सहोरावन जाऊ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाउ जियो जिन्नी सखी सहोरावया ते अंबी छावड़ी एह जियो से गुण मान्य ना आमनी हौ कै जी दोस त्रेउ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाऊ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलिया बग बेठे आए जियो सा तन चली सोहरै क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल पिया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतीस दुखा को त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन का

मलाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा मैं मार्ग देहो बता।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

पाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोहु, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर त्याहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाई, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पव भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाई, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुरते उपजै शब्द विचारा,

त्रिपट अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर भूख न लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई।

गर्भ ना जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदै वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है ता सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, राव रहया प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

प्रभ आप मलाई राम गुरमति घट चानन होआ प्रभ रब रहिया सब थाई राम प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मलाई करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रव हो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड भागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे अन दोहुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना।

हर धूड देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुवाए, निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एक को मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंडिया फल

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारे शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया, व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

आहु संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावां जे प्रभ पावां आपे लय मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया भौजल तरिया गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

मनमुख परम पुलाया, नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भूख लगाया, अनता धन धर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम सलाहे तू, बिन नावे पच पच मोया, गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया, मेरा हृदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत वसारिया, मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया, बड़ भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया, सूही संत महला चौथा, मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया, जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे बनिया, इन हूं मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब कालखा, इन मनमुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे, गुर शब्दी हूं मैं छुटिया, बस आने हो वे जन इस मन को, मन बासे ज्यो नित पौंदिया, दुख रहन वे विहानिया, नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनो, मन आस पूरी हर चौधिया, जन नानक प्रभ देहु मती, छड़ आसा नित सुख सौंदिया, सा तन आसा चित करे राम राजिया, हर प्रभ से जड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ, हर अमृत भरे भंडार, सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ। बाबुल मेरा वड समरथा, करन कारण प्रभहारा, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भवजल पार उतारा। आदि जगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दास दासी, मन मौल तन हरिया। नानक ठाक

जाकौ नदर सरम दे मनमुख भूली बहुती राही हाथी माया फंदे ठाकुर पाणी सा गुणवंती दिनही।

जीवन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी, ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम, मात पिता भाई सुत बंदप। जी प्राण मन पाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया। सर्ब गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा। सर्ब रहे पर पूरे, ताकी सरन सर्ब सुख पाए। हुए सर्ब कल्याण, सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे। नानक सद कुर्बाना, ऐसा गुर वड भागी पाईए। जित मिले प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किलविख उतर है। हर संत धूड़ी नित नापै राम, हर धूड़ी नाइए प्रभु त्याईए। बहुड़ जोन ना आईए, गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे। मन चिंदिया फल पाईए, हर गुण नित गाए नाम त्याए। फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अल पूरन स्वामी।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे है चरण चले है प्रभु मार्ग राम भव सागर नाव हर सेवा जो चढ़े तिस तारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा।

तुम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावह राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावह राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की आत्मीठी कथी अकथ कहानी।

सगली तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याइये सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखा गामी।

भी काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

पूर्ण भगवान अवगण को ना चितारी, पतत पावन हर बिरद सदाई, एक तिल नहीं भन्ने काली, घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जेवड़े अमर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल थल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथ।

राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रुव डिथे जीओ तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण

चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाई महला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सहो ना पाईए कर कर वेश रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस भावे सो थीऐ इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिष्ट साजियन बहु भित संसारा तेरा हुक्म न जापी केतड़ा सच्चे अलख अपारा इकना नू तू मेल लै गुर शब्द बीचारा सच रते से निर्म

फिर मैं झूठ सब बिन सजाए ज्यों टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है ज्यों रंग मजीत सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने।

फिर किने ना पायो, मनमुख दज मुई गावार। सतगुर मिले है सूहा वेस गया, हो मैं विचो मार। मन तन रत्ता लाल हुआ, रसना रत्ती गुण सार। सदा सुहागण शब्द मन, पै पाई करे सिंगार। नानक करमी महल पाया, फिर राखिया उरतार। महला तीजा, मुंदे सूहा पर हर हो, लाल करहो शिंगार। आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार। मुंद सहावी सोहनी, जिस कर सहज पतार। नानक सा धन रा

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन की ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाई मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाई।

थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर विसने कोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावें नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

निशान, नानक नाम लाहा परवान, घर आए बजी वधाई, सच नाम की मिली वडियाई, महला पहला राती होवन कालिया, सोपेदा सेवन देहु बग्गा तपै घना, कालिया काले वन, अंधे अकली बाहरे

सचै आपी एक दूजे भाए खुआयन होमै विच व्यापे यो मानस जन्म दिलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत।

घर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चला।

तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों बावल हुई सो सहो लोरों तै सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोस तै साहिब की मैं सार ना जानी जोबन खोए पाछै पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली बिरह बहून कतह सुख पाए जां हुए कृपाल का प्रभु मलाए विद्गण खूही मुंद अकेली।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावां दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किछ होआ सब किछ तुझते। तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाउ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहु हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासी। जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासी। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान। आपे सुरता आपे जान,

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल।

मन सहज त्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मन मुख परम भुले बौरानी हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियरा रह ना सकै छिन सतगुर बूझ बुझाई रहा मेरा प्रभ बिसरै हो मरूं दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जानी गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाई प्रभ अगम अगोचर दे दिखाई बिन गुर करनी क्या कार कमाई हों मैं मेट चलै गुर शब्द समाई मनमुख विछड़ै खोटी रास गुरमुख नाम मिलै साबास हर कृपा धारी दासन दास जन नानक हर नाम धन रास बलावल महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कतंब सहत सिऊ जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे पहला जन्म गवाया दूजा भाऊ ना दे लिव लागण जिन हर के चरण वसारी

जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मन मुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्सै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जो

जन नानक आपे आप सब वरतै जो राखै तिमै रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनु हर संत भगत तारनु हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइय हर दुख बसारनु रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनु मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बनासा वित्यासा हुए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनु जन नानक तिस पग लावनु राग बलावल महला पंजवा चौपदी घर पहला

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चिलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन

पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रवे आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

सिमरत नसी जां कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद। राग बलावल।

पूरा कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वडभागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराध्य निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूकै जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा विखे बन फीका त्याग री सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महात्मा शक्ति ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगन अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वडभागणी सखिए संतां संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदिया प्यारे रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

बहु तपत व्यापिया, शीतल भये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना।

मिलै निस्तरीय बिलावल महला पंजवां गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये परसीना। मिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाई है चीता। हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत बड़ भागी, साध संग रामह लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमुख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, भणत नानक सरन प्रभ तेरी। बलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वचल पै काटन हारी, संसार सागर अब उतरे पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बलावल महला पंजवा, कवन जानै प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अवनासी अलख अपेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे,

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन तन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरे आणिया, बिलावल महला पंजवां। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साक नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरी, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवां। कर चौथा दुपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे अधीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव, अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी। कहो नानक जप जीवे ज्ञानी, बिलावल महला पंजवां। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किलविख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवां, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे पवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव, साध संग भजिए गोपाल। गुण गावत टूटे जम जाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल।
नानक जाचै सादरवाल बलावल महला पंजवा मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ रज रज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम हृद माहि त्याई नानक गुरपुरे सरनाई जिने अपने नाम की पैज रखाई बलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिसे आगे ही मारे करतार नानक दास तां की सरनाई जा को शब्द अखंड अपार बलावल महला पंजवा ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग आए बसो घर देश मह एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग बलावल महला पंजवा काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सधारे शतरपत संतन कै ख्याल रहाओ हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल बलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघन ना थिया जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास राग बलावल महला पंजवा घर पंजवा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए घर बार रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मरार बलावल महला पंजवा लोकन कियां वड़ियाईया वैसंतर पागो ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो लपट रहे मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत कणी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासुर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बलावल महला पंजवा लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा मैला कदे न होवई नह लागे दागा प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाए
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारी। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है। जित सेवै सुख होए कना मन सोई गाइय। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावै। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से वह अपना काहे फिर हो अपागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंत काल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल। मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल। गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही। प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाए। तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव। सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया ना मैं बिनकूर। जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो तित तित लग है सियानप सब जाली। जात कात तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए। नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस ले हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा। दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय भ्रम पसना। नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल। राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा इस चरणी लाग। माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाव। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान। ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान। भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई। साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अद विचों टूटे। हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई। दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो। संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका ले माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो। पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो। सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया। जिस जन होवा साध संग तिस भेट हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाव। सरन परे की राखता नाही सहसाया। कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया। पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया। नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸ਼ਿਦਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢੱਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸਕੇ ਗੁਣ ਏ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਪਾਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਰੱਖੈ ਆਪ ਦੇਵ ਸੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੈ। ਕਰਨਹਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਅਪਦੇਸਿਆ ਸੁਖ ਖਸਮ ਰਜਾਈ। ਚਿੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਜ ਜਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਹਿ ਬਿਨਸੈ ਨਹਿ ਛੋੜ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਾ ਤਪਤ ਤੇ ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਰਸਤ ਪਾਪ ਨਾਠੀ, ਅੰਡ ਕੂਪ ਮੈਂ ਗਲਤ ਥੇ ਕਾਢੇ ਦੇ ਹਾਥੇ, ਓਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਮ ਉਨਕੀ ਰੇਨ, ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਹੋਵਤ ਸੁਖੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਰਹਾਉ। ਪਰਾ ਪੂਰਬ ਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਭਿਆਈ, ਬਸਤ ਸੰਗ ਹਰ ਸਾਧਕੈ

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए।

नानक तरिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत, तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप नारेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भई देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्य पय रास करतारपुर करता वसै संतन कै पास रहा बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राए भगतन की रास तोट न आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्कर का

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाउ। बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया। बलावल महला पंजवां, कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे तां का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ तां की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किछ बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिया। मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है किस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग तांते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाऊ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भए हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्बत्र मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਥਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

सुख दाते, मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन, मोहे चरण हृदय वसाए, सबहु तले तले सब ऊपर।

नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाओ संच बिख्याले ग्राहज कीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख।

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे सरन सुख दाती

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण आधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो।

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहया समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवां, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सूख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरै मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाओ, अन बोले को तुही पछान है। जो जीन मह होता रे मन काए, कहां लो डह कहें। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भये मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर पर।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक अमाहै, भलो देख दुख भरियै, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरियै, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरियै, नानक का राखा।

करह करावह मुँह कर पावह पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ काच बेहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मह लपटाए जरे अंध कूप मह परे ओ प्राणी परम गबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढै बाहां परे बलावल महला पंजवां मन तन रसना हर कीना भय आनंदा मिटे अंदेसे सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाउ ज्ञानपते सब भई सिया।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहूं ना मान्यो मन छीना बलावल महला पंजवां गुरपुरै मेरी राख लई अमर

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकी शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम। जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परिय नित सरनी गुर ते पाई है एहो निदान। जन्म मरण की कटी है फांसी साची दरगाह का निशान। जो तुम करो सोई पल मानो मन ते छूटै सगल गुमान। कहो नानक ता की शरण आई जहां का किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा मन ताने अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर पकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाओ। कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला।

काटिया हिन मह हुए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सग

पाई। जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया पर पूरे, नानक सरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। बलावल महला पंजवां, दर्शन देखत दोख नस्ते, कभो न हो वो दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सास प्रभ तुझह चितारी, कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रभ आपे। बलावन महला पंजवा, तन तन जोबन चलत गया, राम नाम का भजन ना कीनो, करत बकार निस भोर भया रहाओ, अनक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया, महाविकार घोर दुख सागर, तिसमह प्राणी गलत पया, सरन परे नानक स्वामी की, बाहा पकर प्रभ काड लया। बलावल महला पंजवां, अपना प्रभ आया चीत, दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत, कुशल भया मेरे भाई मीत रहाओ, गई ब्याद अपाद सब नासी, अंगीकार कियो करतार, शांत सुख अर आनंद कनेरे, प्रीतम नाम हृदय उरहार, जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी, तू समरथ स्वामी मेरा, दास अपने को राखन हारा, नानक दास सदा है चेरा। बलावल महला पंजवां, गोविंद सिमर हुआ कल्याण, मिटी अपाद भया सुख साचा, अंतर

ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुरे अपनी बलावन महला पंजवा हर के चरण जप जाऊं कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हृदय धर मन ध्यान रहाऊ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया इहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान बलावन महला पंजवा राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाओ विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बलावल महला पंजवा दुपदी घर अठवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर खुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा का कौ दराओ का स्यो बल बंचा जह जह पेखो तह तह नेरा साध मूत गुर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा बलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराती सरन चरन रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो ठौर नाही कस ठीठ मुकरन बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो कोट अगा तेरो नाम हरन हमरो सहाओ सदा सद भूलन तुमरो बिरद पतत उधरन करना मैं कृपाल कृपा नित जीवन पद नानक हर दर्शन बलावल महला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संत चरण हमारो माथा नैन दर्श तन तूर पर हो रहाओ गुर को शब्द मिरहि अरै बासै हर नामा मन संग धरो तस्कर पंच नवारो ठाकुर सगलो भरमा होम जरो जो तुम करो सोई भल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो बलावल महला पंजवा ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा तुमरो

जन चर राजमुख मात लागी हासा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जान हो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निधान नानक हर सेवा अवर से

पतचपावन प्रभ बिरद तुम्हारु हमरे दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हम मैं पटल कृपा कर जारु जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारु जन नानक प्यास चरण कमलन की पेक दर्श स्वामी सुख सारु बिलावल महला पंजवा आगे पाछे कुशल भया गुरपुरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी माया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आन

कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अच्युत अभनासी नानक उचरे हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब मेरी आस पुनी। रहाओ पीर गई बांदी मन तीरा, मोहयो आनंद तुनी उपजयो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारी,

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको,

को दूजा देख कहो पावे मन सोई। नानक कह अवर नहीं कोई, बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे, तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

चूकै अभमानै गुरमुख नाम सदा सदा बखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊ सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उदार, पै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी बिस्माद, चख अनद पूर्ण साध। नह डोली है इत ऊत, प्रभ बसे हर हर।

सुन मोहे अनहत बैन, हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार, ता की मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए, कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार, प्रभ करहो साधु तूर, नानक मन सापूर, बलाव महला पंजवां, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग, मन मिस्त हर हर रंग, कर दया ले हो नर लाए, नानका नाम त्याए, दीन

ज्यों महा खुदियारत भोग ज्यों मात पूत है हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हितन संग मैगल है कामै बंद ज्यों ग्रस्त बिक

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देख।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाओ, रात दिनंत किए पौ पाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिर जनहारा, तृतीया

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा।